क्यों? क्योंकि ये जो सिस्टम आ रहा है ये शख्स नहीं है, ये कोई पर्सनैलिटी नहीं है कि जिसको अपॉइंट किया जा रहा है। असल में ये वो सिस्टम है कि जहाँ पर 1,24,000 आए और अब इसको जो कंटिन्यूशन देनी है वो ये सिस्टम देगा, और जब तक ये सिस्टम रहेगा मैं खुदगर्जी, तकब्बुर, ख्वाहिशात नफसानी सब खत्म है, सब फिनिश है। अब क्या करें? यानी शैतान इतनी प्लानिंग करके बैठा हुआ था कि आपको पता है जब रसूल खुदा के लिए, जब खुद रसूल खुदा की विलादत हुई, शैतान ने मक्का में देखा कि क्या मामला चल रहा है, पूछा अपने जो उसके कारिंदे थे भाई क्या है, बोला भाई वो मामला है मक्का में, खुद आया भाई क्या मामला है, कहा आखिरी रसूल पैदा हो गए, कहा तो आता इजाजत नहीं है, मुझे इजाजत नहीं है, इनमें इजाजत नहीं है नफूस की, कहता है ना, कहता है कौम में, कह रहा हाँ ठीक है बस काफी है। एंड ही स्टार्टेड प्लानिंग, आप उसकी प्लानिंग देखें, यहाँ रसूल खुदा ने इतनी मेहनत की दीन, ये रसूल खुदा की मेहनत तक के लिए कितने अंबिया मेहनत कर रहे थे, किस चीज़ पे मेहनत कर रहे थे, ये जो एक रॉ मटेरियल आया था दुनिया में, इस रॉ को स्ट्रक्चराइज करना था, रॉ था कुछ भी नहीं था, मतलब आप अभी मतलब देखें आपने इमाम बारगाह बनाई है, अब पहले वाइट जंगल है खेत, अभी इसको खड़ा करने में कितनी मेहनत है, आर्किटेक्चर से लेकर तो डिज़ाइनिंग तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पता नहीं क्या क्या क्या, फिर मशीनरी, फिर प्रोडक्शन, फिर कितना मेहनत है। और वो जो एक रॉ आया है अभी के जो इस पूरी दुनिया को डिज़ाइन करेगा और फिर उसके बदले में उसको अजर जन्नत दिया जाएगा, जन्नत भी एक्चुअली वो हमारी अपनी डिज़ाइन की हुई है जो हम कर रहे हैं बेसिकली, तो उसके लिए अब इसको जो स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है तो किसको भेज रहा है, एक एक को भेज रहा है, हर दौर में एक आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कितनी मेहनत की अंबिया ने, बनी इसराइल के अंबिया बहने तुलुएन आरों से काट दिए गए, हज़रत इब्राहिम की मेहनतें, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मेहनतें, अब कहते हमारे लिए तो बड़ा इजी है पढ़ के निकल गए, हज़रत मूसा की एक रात को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हज़रत यूसुफ की जिंदान के उन कुछ लम्हों को हम महसूस कर सकते हैं, हज़रत यूसुफ ने कितनी ज़हमत की वहाँ पर, नहीं यहीं पर मैं ब्रैकेट में हज़रत यूसुफ का एक वाक़या कि खुद यूसुफ पैगंबर खुदा हैं, शब जुमा है, जवान ऑडियंस है हमारी, यूसुफ खूबसूरत खूबसूरती, दुनिया की खूबसूरती से मुंह मोड़ लेना यूसुफ बना देता है, यूसुफ यही है, यूसुफ और किसको, असल यूसुफ नाम ही खूबसूरती का है, आपके जहन में यूसुफ आया तो आपके जहन में क्या आता है, खुदा ने नाम में हुसन रखा है, खुद पैगंबर कैसा होगा, यानी वाकई कि तुम भी कभी जुलैखा की तरह कुछ हसीनों से मिला दो तो मज़ा आ जाए। बात तो यही थी ना कि जुलैखा ने क्या कहा, जुलैखा जब इश्क में गिरफ्तार है तो क्या बोला, अभी लोग मानते नहीं थे तो कहा कि मैं बुलाऊंगी, हाँ छुरी और अनार, अनार काटना इजी नहीं है, महसूस होता है कट रहा है तो बस काटना, यूसुफ अलैहिस्सलाम जैसे ही आए अनार तो क्या उंगलियां कट गईं, कोई मजाक नहीं है, यानी क्या हुस्न था। तभी शायर कहता है कि तुम भी कभी सुलेखा की तरह कुछ हसीनों से मिला दो तो मज़ा आ जाए, और मीरे महफिल बने बैठे हैं हम, तुम हमें महफिल से उठा दो तो मज़ा आ जाए, तशना कामी की सजा दो तो मज़ा आ जाए, तुम हमें जहर पिला दो तो मज़ा आ जाए। तो बात यही है कि अब जब हजरत यूसुफ ये, तो अत्तार निशापुरी अपनी किताब तरसत औलिया में वाक़या बयान करता है, एक यूसुफ था वल्द हुसैन, यूसुफ पिसर हुसैन,

किसी कबीले में था, कहीं जाकर किसी और कबीले में ऊंट को जो है वो बयाबान में लेके जाने की जॉब करता था, उनको खिलाना चराना शुतुरबानी करता था। झोंपड़ी में रहता था, रात झोंपड़ी में था, अचानक से देखा कि झोंपड़ी के अंदर कोई दाखिल हुआ, तो देखा कौन है, देखा कि जो कबीले का सरदार है उसकी बेटी आ गई। अब ये अंदर इसने बोला तो कहती है कि जब से तुम आए हो मैं तुम्हें देख रही हूं और तब से मेरा दिल तुम पर आया हुआ है। अब ये जाहिर है एक, अब इसके अंदर हालत खराब, बदन लरजना शुरू, अंधेरा।

मैं तुम्हें देख रही हूं और तब से मेरा दिल तुम पर आया हुआ है। अब ये जाहिर है एक, अब इसके अंदर हालत खराब, बदन लरजना शुरू, अंधेरा, कोई और नहीं। अब वो बात करती जाए और आगे आती जाए और ये और समेटता जाए, पीछे आता जाए। वो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूं इस वक्त। अब वो जो जिसके बदन पे लर्जा हो, वो जो जिसके दिल में खुदा हो, वो तो चाहे जितना अंधेरा हो, जितनी तन्हाई हो, जितनी खलवत हो, कोई ना देख रहा हो, आप अकेले हो, वो जानता है कि वो देख रहा है। वो भागा बाहर, ये उसके पीछे भागी, लेकिन अंधेरा था तो नजर नहीं आया। ये भागता भागता हांफता कांपता एक जगह पहुंचा तो इसे दूर कहीं और रोशनी नजर आई, किसी और कबीले की। थक कर वहीं सो गया। इसने क्या देखा ख्वाब में कि अचानक से वो जगह बड़ी रोशन हो गई है और कुछ सब्ज लिबाजों में आए हैं। तो उसने बोला, ये आप लोग कौन है, मैंने कभी इस जगह को देखा नहीं है। कहा, हम मलाइका है। कह रहा, मलाइका? कह रहा, हाँ। कह रहा, हम तुम्हें, हमारे साथ चलो। चला चला तो देखा कि एक जगह एक मसनद है, एक तख्त है और एक खूबसूरत जवान बैठा हुआ है। तो कहा कि चलो। कहा, ये कौन है? कहा, ये यूसुफ पैगंबर है। यूसुफ पैगंबर? कहता, पैगंबर ने बुलाया हजरत यूसुफ ने, आओ मेरे साथ बैठो तुम। अभी आकर बैठा है। कहता, आखिर मेरे पास ऐसा क्या है, मैंने ऐसा क्या किया है कि आप मुझे अपने साथ बैठा रहे हैं? कहते हैं, जब रात को वो खातून तुम्हारे उस झोपड़ी में आई और तुम वहाँ से भागे तो खुदा ने मुझे निशान दिलाया, देखो यूसुफ तुम भी जुलैखा से मुड़कर निकले थे, ये जवान भी एक जुलैखा को छोड़कर जा रहा है, जाओ इससे जाके मुलाकात करो। ये खूबसूरती अज़ीज़ाने मोहतरम, ये है वो विलायत की एक्सेप्टनेस। जो विलायत को कबूल करता है उसके अंदर एक स्ट्रक्चर्ड, एक मशीनरी है जो उसको पाक करती रहती है, पाक करती रहती है। ये जो विलायत है अली इब्न अबी तालिब, इसको हम समझे नहीं है। मैं खुदा ना खास्ता आपको जसारत, मैं अपने आप को समझे नहीं है। ये वो क्रशिंग सिस्टम है विलायत, कि दुनिया का हर बोग्स, हसद, कीना, हर बीमारी जिसे दुनिया का कोई मेडिकल ट्रीटमेंट, कोई सर्जरी, कोई मेडिसिन, कोई लैब ना डायग्नोस कर सकती है ना उसकी ट्रीटमेंट कर सकती है, ये विलायत वो है कि जब गुजरती है हवाओं की तरह तो मोमिन मुनाफिक अलग हो जाता है। क्वालिटी है। हाँ, यही तो आयतुल्लाह कश्मीरी फरमाते थे। आयतुल्लाह कश्मीरी रिजवानुल्लाह ताला अलैह, कि आपकी सलवात उनके दर्जात में इजाफा फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। जब सद्दाम के दौर में भेज दिए गए, वापस निकल गए, निकलना पड़ गया, तो कुमुल मुकद्दसा में थे तो उनके शागिर्द कहते हैं, आयतुल्लाह कश्मीरी नजफ का इतना जिक्र करते थे, इतना जिक्र करते थे, हमें ये डर हो गया कि दुनिया में कोई और शहर है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस शहर की फजाएं गुंबद अमीरुल मोमिनीन से टकरा के आती हों, एक अजीब कैफियत है विलायत की वहां पर। तभी तो ऐसे ऐसे औलिया, ऐसे ऐसे वली उस सरजमीन ने बनाए कि हम तो बस नाम सुन रहे हैं उनका। जाने मोहतरम शेख मुकद्दस अर्दबेली, सैयद मेहदी बहरुल उलूम, आयतुल्लाह उज़्मा खुई, आयतुल्लाह उज़्मा सिस्तानी फजलुल्लाह के अभी वहाँ मौजूद हैं, सैयद बाकरुल हदीम, बाकरुल सदर, इमाम खुमैनी जैसी शख्सियतें वहाँ से निकली, शेख आरिफ हुसैनी शहीद जो पाकिस्तान के थे वो वहाँ। यानी क्या है वहाँ? विलायत है, विलायत। बस वही एक जरी है कि किसी आलम दीन ने ख्वाब में देखा शेख मुकद्दस अर्दबेली को, तो देखा कि सहने अमीरुल मोमिनीन में से नूर की हालत में चल रहे हैं।

तो किसी ने पूछा कि ये सब कहाँ से मिला, तो इशारा किया ये सब इन्हीं का कर्म है, ये सब इन्हीं का कर्म है। और अल्लामा अमीनी रिजवानुल्लाह ताला अलैह के आपकी सलावात उनके दर्जात में इजाफा फरमाए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद आले मुहम्मद। और 40 साल स्पेंड किए एक बुक लिखने में, गदीर और जो कुछ था और जहमत ट्रैवलिंग और पता नहीं क्या क्या क्या किया। तो दमिश्क में थे तो वहाँ दूसरे मकातिब के उलमा बैठे हुए थे, तो वो इनसे गुफ्तगू कर रहे थे, कहा आप मौलाए कायनात के बारे में गुलू करते हैं बहुत। कहा क्यों? कहा आप कहते हैं कि वो रात को 1000 रकात नमाज पढ़ते थे। भैया ये कैसे मुमकिन, इट्स नॉट पॉसिबल। उन्होंने कहा वो मौला थे, और आपको पता है अल्लामा अमीनी की टांग में प्रॉब्लम थी एक टांग में, तो उन्होंने कहा कि वो तो इमाम थे, ये 1000 रकातें तो मैं पढ़ सकता हूँ। कहते हैं अच्छा, उन्होंने शुरू किया, अभी आधी रात गुजरी नहीं थी आधी नमाजें हो गई, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं हमें पता है, हमें यकीन हो गया कि मौला पढ़ते थे। कहा नहीं अब तो मैं पूरी पढ़ूंगा। और अल्लामा अमीनी फरमाते हैं कि मैंने इससे पहले कभी पढ़ी नहीं थी, मैंने कहा मौला जाने और नमाजें जाने, सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद। अजाने मोहतरम खब उलमा के वाकयात इसने इतने भरे हुए हैं विलायत से। असल हम अगर देखना चाहते हैं विलायत को इस तरह देखें कि और दे एक्सेप्ट द विलायत, एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर डिजाइंड है जिस पर अंबिया ने काम किया, रसूल खुदा को भेजा और फिर उसके बाद, अब मुश्किल यही थी कि सामने दूसरा सिस्टम भी अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, पूरी मेहनत कर रहा है, उसका मुकाबला मेरे आप से नहीं है, उसका मुकाबला इलाही निज़ाम से है। ये जितनी भी ताकत काम कर रही थी, और उस टाइम जो रसूल खुदा ने ये काम किया मायूस हो गए, वो ये सोच रहे थे भाई ये चले जाएंगे तो हम अपना हम काम कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा ये क्या किया इस विलायत का, अब तो फिर उसके बाद शैतान ने अपनी पूरी कोशिश की, और आप देखें कि कितना कामयाब हुआ, जाहिरन जाहिरन इस तो नाकामी है, वो जाहिरन कामयाब हुआ कि अभी कुछ साल गुजरे, 50 साल उसी मिंबर रसूल पर यजीद जैसा लईन शख्स आकर बैठ गया। ये इत्तफाकी नहीं था, ये दूसरे सिस्टम का काम था। एंड दे ऑलवेज, वो हर वक्त विलायत के पीछे लगे रहते हैं, जहां उन्हें महसूस होता है वहां वो पेनिट्रेट करते हैं। हम गाफिल ना रहें कि हम जिस दौर में हैं इस टाइम दुश्मन सो रहा है, विलायत का दुश्मन बेदार है, उसे विलायत से मुश्किल है। उसे कौन सी विलायत से मुश्किल है? उसे उस असली विलायत से मुश्किल है कि जिसका इकरार दिल करता है और अमल किरदार करता है, किरदार अमल करता है। किरदार अगर गदीरी हो तो फिर मीसम की तरह दार पे लटकाए जाओगे, किरदार गदीरी है। अगर मीसम किरदार गदीरी ना होता तो दार पे क्यों लटकाया जाता, वो छोड़ देते, वो ये तो ऐसी है। नहीं, वो जानते हैं कि जिनके वजूद में ये विलायत सरायत कर जाए वो ट्रांस मॉडर्नाइजेशन के दौर में भी $200 मिलियन के ड्रोन को गिरा देते हैं। ये विलायत है, दिस इज एक्चुअल विलायत। उनको उस विलायत से मुश्किल है, वरना मुसलमान तो कितने सारे हैं पूरी दुनिया में, हु केयर्स, उनको नहीं है। खूबसूरत मस्जिदें बना लें आप पूरी दुनिया में, दे डोंट डिस्टर्ब यू, मगर अगर इन्हीं इमाम बारगाहों मस्जिदों में अगर अलियन वलीउल्लाह की सदाएं आएंगी तो फिर मुश्किल शुरू हो जाएगी। और फिर अगर किरदार गदीरी पैदा हो जाएं और जवान वेलाई हो जाएं, उन्हें मुश्किल इससे है। आप इसको गौर करें अजीजाने मोहतरम, हमारी बड़ी सख्त जिम्मेदारी है

और डर गए। और फिर इंसान ने इस विलायत को कबूल किया। खुद मुफस्सरीन ने बहुत गुफ्तगू की है कि ये अमानत क्या है, क्या है ये अमानत, मुख्तलिफ है। लेकिन जमीन आसमान का जो इनकार था वो उनके अपने लेवल के हिसाब से कि हाउ दे हैव कैपेसिटी, जितनी कैपेसिटी थी उस हिसाब से उन्होंने उसको कहा कि उसकी कैपेसिटी उतनी नहीं थी जिस दिन चीज़ों को दी गई। इमाम रजा अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम रजा इस आयत के ज़ेल में फरमाते हैं कि ये विलायत, जब ये अमानत जो थी बेसिकली ये विलायत थी, ये विलायत सातवें आसमान ने एक्सेप्ट की तो वो अर्शे इलाही बना, चौथे आसमान ने एक्सेप्ट की तो बहते मामूर बना, जमीन में एक हिस्से ने एक्सेप्ट की तो वो काबा बना, मदीना ने एक्सेप्ट की तो वो रसूल खुदा की जीनत बना, कूफा ने एक्सेप्ट किया तो वो नजफ का हिस्सा बना। और ये एक्सेप्ट हर चीज ने अलग अलग एक्सेप्ट की। उन्होंने कहा कि तीन पहाड़ों ने एक्सेप्ट की इस विलायत को, तो एक अकीक बना, एक फिरोजा बना, एक जुमुर्द बना। मिनरल्स ने एक्सेप्ट की तो गोल्ड बना और सिल्वर बना। वाय दे यार, ये क्यों कीमती है सोना क्यों भाई, और भी तो है कितने सारे, सोना क्यों कीमती है? क्योंकि इसने एक्सेप्ट किया। फल जो मीठे और मजेदार हैं, जितनी जितनी विलायत जिसने एक्सेप्ट की वो उतना मीठा होता चला गया। और ये एक्सेप्टेंस ऑफ विलायत है अज़ाने मोहतरम। तो ये जो हम हैं, बहरहाल टूटे फूटे खताकार, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, गुनाहकार, मगर फिर भी जब अली का नाम आता है तो चेहरा खिल जाता है। ये वो एक्सेप्टेंस है कि जिसे हमने भी आलम अरवा में कबूल किया है। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। अब यही एक्सेप्टेंस है कि जो हमें ड्राइव कर रही है, और हमने ही इस एक्सेप्टेंस को जो है वो अपने लिए कमाल तक लेके जाना है। अज़ीज़ान मोहतरम, ये एक अल्लाह ने, ये सॉफ्टवेयर है बेसिकली, आप इसको अगर जवान समझना चाहें, बेसिकली ये सॉफ्टवेयर है। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है कि ये कल्ब के अंदर वायरस नहीं आने देता। ये जिसके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड हो उसको वायरस नहीं लगता, और अगर कुछ इंजेक्ट होने की कोशिश भी करता है तो ये सॉफ्टवेयर विलादतों पे, शहादतों पे रिवाइव होता है। तो वो जो थोड़ा बहुत आता भी है कचरा तो वो ड्रेन आउट होना शुरू हो जाता है। ये फायदा है इस विलायत के सॉफ्टवेयर का। अब दुश्मन पूरी कोशिश करता है कि सॉफ्टवेयर के अंदर हैकिंग करे। हैकिंग कहाँ से करे? हैकर को सिस्टम का पता ना हो तो वह हैक नहीं कर सकता। तो वो कोशिश करता है कि इस सिस्टम के लोगों के अंदर अपने बंदे इंस्टॉल करे, चाहे वो जाकिर हो, चाहे वो शायर हो, चाहे वो कोई भी हो। अब वो वहां इंस्टॉल करता है, अब वो जो कोशिश करता है कि मैं हैक करूं, और वो करता भी है, कई साल से कोशिश कर रहा है, पूरी बहुत पैसा लगा रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है। उसको पता है कि इस पूरे सॉफ्टवेयर का जो कोर है, जो चिप है कि जिससे ये वाइब्रेंट लेता है पूरे स्ट्रक्चर को, वो अली है, वो अली है। अब वो क्या करे? कहता है कि जब भी कोशिश करो, ये इतनी इतनी हमने मेहनतें की, इतनी मेहनत की हमने कि गदीर को चंद दिनों में बुलाने की पूरी कोशिश कर ली हमने, इतनी मेहनत की कि मदीना में दरवाजे खटखटाती रह गई पैगंबर की बेटी, मगर कोई बाहर नहीं। ये बहुत मेहनत की उन्होंने, कहा मगर मुसीबत ये है

और दरिया समंदर स्याही बन जाएं, मगर फिर भी कलमतुल्लाह के फजाइल नहीं लिख सकते। और अली कलमतुल्लाह है कि जिसके फजाइल लिखे नहीं जा सकते। मैं बस तबर्रुकन, क्योंकि बहरहाल महफिल है, तो मैं कुछ अशआर जो है वो शहीद मोहसिन नकवी के आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि शहीद के दर्जात तो यकीनन बुलंद से बुलंद हैं, यानी वहाँ से कुछ हमें भी देख लें, कुछ हमारे भी दर्जात बुलंद हो जाए। तो इसीलिए शहीद ने जो अली का ज़िक्र में जो चंद मेरे पास बहरहाल ज़ाहिर है, मैं बहुत अच्छा शेर पढ़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल महफिल है तो इसीलिए कि हम भी थोड़ा इसमें भी कहीं हमारा भी ज़िक्र में ही मद्दाई में ही नाम आ जाए। तो शहीद मोहसिन फरमाते हैं कि तेरा लिबास शरीयत विला के धागे से, तेरा लिबास शरीयत विला के धागे से अगर सिला ही नहीं है तो फिर सिला भी नहीं है। अगर सिला ही नहीं है तो फिर सिला भी नहीं। अजीब मर्ज है बुग्ज़े अली वली जिसमें, अजीब मर्ज है बुग्ज़े अली वली जिसमें, कोई दवा भी नहीं और कोई शफा भी नहीं। मुजाहिर है जिसको बुग्ज़े अली का, उसको आप दुनिया की दवाइयां देते रहे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। आगे फरमाते हैं कि अंधेरी कब्र में ये सोचना के अजरे नबी, अंधेरी कब्र में ये सोचना कि अजरे नबी वहां दिया जो नहीं था, यानी नहीं दिया था गिव नहीं, वहां जो दिया भी नहीं था यहां दिया नहीं। क्या खूबसूरत लफ्जों का इस्तेमाल किया है वाकयन। यहां दिया नहीं यानी यहां रोशनी नहीं है, जब वहां अजरे रिसालत यही तो था, अजरे रिसालत विलायत खूब नहीं दी तो यहां भी अब कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिलने वाला। फिर आगे फरमाते हैं कि बगैर इश्क अली तूने इस जमाने में, बगैर इश्क अली तूने इस जमाने में तवील उम्र गुजारी है और जिया भी नहीं। तवील उम्र गुजारी है और जिया भी नहीं, वो अली के बगैर भी कोई जिंदगी है? वैसी कोई जिंदगी नहीं है अली के बगैर। हो फिर अली वली के अदू और क्या सजा हो तुझे, अली वली के अदू यानी दुश्मन, क्या सजा हो तुझे, नमाज पढ़ भी रहा है और हुई अदा भी नहीं। हुई हदीस है ये, इमाम साहब फरमाते हैं कि तुम सारी इबादतें सब कर लो, सारी चीज़ें कर लो, मगर अगर विलायत अली इब्ने अभी तालिब नहीं है तो कोई चीज़ एक्सेप्ट नहीं है। खूब आखिरी और बहरहाल आपसे इल्तमास दुआ कि जिसे अली की मोहब्बत पे मौत आ जाए, जिसे अली की मोहब्बत पे मौत आ जाए, मरा ये है कि वो, मज़ा ये है कि वो मर भी गया है और मरा भी नहीं। मज़ा ये है कि वो मर भी गया है और मरा भी नहीं। बहरहाल इसी दस्त दुआ के साथ के परवरदिगार इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता फरमा, हमें उनके नासरों उनके मददगारों में शुमार फरमा। परवरदिगार विलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर कायम रहने की तौफीक अता फरमा। दुश्मनान अहले बैत, दुश्मनान विलायत अगर हिदायत के काबिल हैं तो उन्हें हिदायत नसीब फरमा, और अगर हिदायत के काबिल नहीं तो उन्हें कैफर किरदार तक पहुँचा। मुसलमान जहाँ जहाँ भी अपनी आज़ादी की जंगें लड़ रहे हैं, परवरदिगार उन्हें कामयाबी अता फरमा। जहाँ जहाँ भी परेशान हैं, कश्मीर के अंदर है, बहरीन में, सीरिया में, यमन में, जो जो परेशान है, परवरदिगार उन सब की परेशानियों को विलायत अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सदक़े में जल्द से जल्द दूर फरमा। बहुत सारे लोग मरीज़ हैं, यकीनन हाज़रीन में भी होंगे, आपके भी जानने वाले होंगे, मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा है, मरीज़ों को शिफाय कामला और आजला अता फरमा। जितने भी असीर हैं, बेगुनाह असीर हैं, जहाँ जहाँ भी असीर हैं, परवरदिगार उन सबको असीराने कुफ़ और शाम के सदक़े में जल्द से जल्द रिहाई अता फरमा। ख़ास तौर पर शेख ज़कज़की को उनको शिफा अता फरमा, उनकी मुश्किलात को हल फरमा। परवरदिगार हमें कोई गम न दे सिवाए गम हुसैन के, जो बेरोज़गार हैं रिस्क के हलाल अता फरमा, जो बरसर रोज़गार हैं रिस्क में तरक्की और कुशादगी अता फरमा, जो मकरूज़ हैं गैब से अली के सदक़े में उनके कर्ज़ों को दूर फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं उसे इसी विला के सदक़े में एक ऐसी औलाद अता फरमा कि जो विलायत का जिक्र करती हो। परवरदिगार जो घर नहीं है उनको ऐसे घर अता फरमा कि जहाँ पर अली का जिक्र हो। हमें कुछ और नहीं चाहिए परवरदिगार, हमें दुनिया में भी विलायत, मरते वक्त भी अली।

0: उठते वक्त भी अली अली फरमा, बाकी तो मामले खुद मौलाए कायनात संभाल लेंगे इंशाल्लाह। परवरदिगार हमारे दरमियान में, कम्युनिटी में, आपस में मोहब्बत, इत्तफाक, भाईचारा कायम करने की तौफीक अता फरमा। कम्युनिटी के बुज़ुर्गों को सेहत तूले उम्र अता फरमा। जवानों को जो है वो इंथ्यूज़म और उनके अंदर पोटेंशियल और विलायत के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा। ख़वातीन को उनको इफ़त, चादर, हिजाब, इसको कायम करने की तौफीक अता फरमा। ज़ैनबी किरदार हमारे घरों में ख़वातीन में अता फरमा। परवरदिगार हर शख्स कम्युनिटी का इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, सारे लोग इंपॉर्टेंट हैं। हर शख्स को जो उसकी ड्यूटी है उसे सही तरह अदा करने की तौफीक अता फरमा। जो मुश्किलात हैं कम्युनिटी में परवरदिगार उनको जल्द से जल्द दूर फरमा। हमारी कम्युनिटी को ऐसी कम्युनिटी बना कि वक्त का इमाम इधर देखे तो बोले कि ये वो जगह है कि जहाँ इमाम खुद आना चाहते हों। परवरदिगार अल्लाहुम्मा अर्जुकना ज़ियारतुल हुसैन फ़िद दुनिया व शफ़ातहु फ़िल आखिरा। सलवात बेते मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।
1: When your family sleeps, your wiring keeps working. So make sure the veins of your house are strong enough to protect it. Euro cables built into your walls, built for your family. Buy Euro cables, stay safe.
2: Across borders, across terrain, across time. Because reliability begins before the engine starts. Every load secured, every journey tracked. Moving industries forward, kilometer by kilometer. Golden Group partner with a logistics company you can trust.

आप समझ गए, समझ रहे हो? तो हमारी खासियत यह है कि हम शैतान हम पर ही एक्स्ट्रा टाइम लगाता है। जब एक्स्ट्रा टाइम लगाता है तो लड़ते भी हम ही माशाल्लाह इधर उधर थोड़े ज़्यादा ही हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, दैट शुड नॉट बी द केस इन नमल मोमिनून इख्वा एज वी ऑल रिमेंबर, बट स्टिल कीप ऑल द डिफरेंसेस असाइड, दीज नेशनल बाउंड्रीज डू नॉट मीन एनी थिंग वन द क़ाइम इज गोइंग टू रिपेयर। वी ऑल विल बी वन बॉडी अंडर द फ्लैग, अंडर द बैनर, अंडर द लीडरशिप ऑफ द क़ाइम ऑफ आल मोहम्मद, इज़न इट? अम्मार बिन यासर बनु मखज़ूम, अबू ज़र बनु गफ्फार, सलमान फ्रॉम पर्शिया, खालिद बिन सईद बिन आस बनु उमैया, अबू अय्यूब अल अंसारी, जो सबको एक जगह जमा कर देते हैं वो मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद इब्न अबी बकर बनू तैम, हाशिम अल मिरकाल बनू जोहरा, डिफरेंट ट्राइब्स, आपस में शक्ल देखना गवारा नहीं है, लेकिन जब अली से वाबस्ता हो गए तो जान छड़क रहे होते हैं। और आइडेंटिटी इज व्हाट वा समाकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह हैज टर्न्ड दिस व्हाट Muslim, and within Muslim, Ya Ali, anta wa shi'atuka humul faizun. You and your Shi'as, inshallah, they are going to be the victorious ones, inshallah, on the day of judgment, in this dunya, inshallah. Right? For us, that matters the most. And then we come to the fifth point, inshallah, and that is. ये point बड़ा खतरनाक है, लेकिन मैं हिम्मत करके आपकी खिदमत पेश कर लेता हूँ. जज्बात अपनी जगह. But we have to refer to the experts. We have to refer to our maraji. We have to refer towards the community leaders here to devise a better approach of how to go through these things. Parwardigar ne aapko ulama diye hain, neemat hain, inki qadar kijiye. Ulama diye hain aapko. Mujh jaisa banda to aapka khoon garma ke chala jayega. Bata raha hu main aapko. Fir main hi wahi nahi aaunga jahan bulaya hoga aapko. भाई यही है ना, तरावी पे सबको लगा दिया, खुद कभी नहीं पढ़ी, ऐसा ही हुआ, जाके आप खुद पढ़ लीजिए किताबों को, निअमतुल बिदअत, क्या खूबसूरत बिदअत है, सबको लगा दिया, खुद साइड से निकल गए, ऐसे ही कभी नहीं पढ़ी उन्होंने मस्जिद में आके, देखिएगा आप कभी किसी की किताब भी पढ़ लीजिए। देखिए मैं खून में तो गरमा सकता हूँ, लेकिन खून नहीं गरमाना सरकार, सिर्फ यू हैव टू गिव द होल सोल्यूशन, and that are going to be the community leaders, the ulama, the numainde of the maraji. You might have difference of approach, none of us are equal, but let me be not naive that I start talking about the policy that the Shias of the Canada need to have, the Shias of the Toronto need to have. Ye unke liye chhod dijiye जिन्होंने अपनी ज़िंदगी लगाई है अहले ईमान की खिदमत में। मुझ जैसे बंदे सिर्फ वही बात कर सकता है जो यूनानिमस हो, बस, नो कंट्रोवर्शियल थिंग। मौलाना शुड सेंड एन ईमेल, व्हाई आर दे नॉट डूइंग दिस, लीव इट अपॉन देम, गो एंड टॉक टू द अदर चैनल्स दैट आर द राइट चैनल्स। सोशल मीडिया इज नॉट गोइंग टू डू एनी जस्टिस, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। सिर्फ फितना फैलेगा, मैं अपने 15-20 साल के तजुर्बे से बता रहा हूँ, एक बंदा भी तब्दील नहीं हुआ, लड़ाई होती रही, कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। जब तब्दील होना होता है तो आप पर्सनली जाके बात करते हो, वन ऑन वन एहतराम से बात करते हो, तो लोग में तब्दीली आ जाती है। जिसने नसीहत की लोगों के सामने, उसने नसीहत नहीं की, उसने जलील किया है। 10 लोग बैठे हुए, मैंने किसी को गलती करते हुए देखा, एंड आई केम इन, सुपर मुजाहिद पर्सन, यू डिड रॉन्ग। अगर उसने प्राइवेट में गलती की थी, आपने पब्लिक में बता के उसकी गीबत भी की है और मोमिन की तौहीन भी की है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अम्मल अवाम, फॉर नॉर्मल पीपल, इमाम हसन अल अस्करी अलैहि सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, फॉर देम इज व्हाट